श्री सारी भक्ति पूजे तम नताई रोकन्य दो दोनों शर खुलिया पंगी जोरो तनान